0: चाप ने किया है।
1: Times FM,
2: राधे श्याम राधे श्याम।
0: अरे राधा, ये किस फिल्म का गाना है?
2: ये गाना नहीं है भाभी, ये एक दुकान का नाम है जहाँ रंग बिरंगी हैदराबादी नेचुरल फ्रेश वाटर पर्ल्स की प्रदर्शनी लगी हुई है।
0: तुम मुझे वहाँ ले चलोगी?
2: क्यों नहीं, जरूर। और आपके लिए 10-25% की छूट भी है।
3: Teens Today, the magazine for teenagers from India Today.